क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:07।
1: बॉलीवुड।

परफेक्ट फॉर अर्ली मॉर्निंग लिस्टिंग कॉल्ड जानी किस पोड़ पे. ये लव रंजन की पहला प्यार दूसरी बार, लव दैट टाइटल एज वेल, दैट रिलीजिंग ऑन द 23rd of October. सो राइट हियर ऑन the show, and I've got some new tracks lined up for you first thing in the morning. Ek to aapne suna aur dusra coming up in just a while. It's called Phata Pataka from Nayi Naveli coming up in just a while. आप बताइए कौन से गाना सुनने के मूड में आप हैं सुबह सवेरे. लेट मी नो, सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062. दिस इज शाहरुख रेजिडेंसेस बाय डैन्यूब ऑन बिग 106.2. बिग 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
3: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स, जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umal Quain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit UAQ FTZ.com.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 7:28 on the clock, 31 degrees Celsius right now, humidity at 62%, winds blowing at 13 kilometers per hour, highs of 36, lows of 31 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae

0: तो फिर आओ और मुझे बताओ, दैट्स व्हाट द फर्स्ट आवर ऑफ द शो इज ऑल अबाउट. व्हाट इज दैट वन सॉन्ग दैट यू वांट टू लिसन टू इन द फर्स्ट आवर, द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड नाउ इज शाहरुख रेजिडेंसेस बाय डैनियल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: This is not the big breakfast with me, Sid. It is Shahrukh's Residences by Danube. And thank you very much to Ranjan. Ranjan has amazing taste in music. Yaar, kahan se dhoond ke nikala hai? Inhone ek gana. Ranjan, thank you so much for that WhatsApp on 0543091062. Inki tarah aap bhi WhatsApp kar sakte hain. But agar bata diya hota ki kiske liye ये गाना आपको सुनना है, किसको डेडिकेट करना है, तो मजा आ जाता. बिकॉज इट्स सच अ रोमांटिक सॉन्ग. आई एम श्योर इट्स नॉट डेडिकेटेड टू योरसेल्फ, बट या इट इज एन अमेजिंग सॉन्ग. जस्ट यू नो गेट्स यू इन द राइट मूड टू फेस अ न्यू डे एट वर्क. इट्स कॉल्ड मन चला एंड इट्स बाय साहिल. Our WhatsApp number is 0543091062. Just about 7 minutes to go in this hour of the show. Keep it locked to Big 106.2. We are the beat of Bollywood. Good morning.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हो या कोई भी त्योहार, बावरी और कोरा से दिखो शानदार हर बार। From graceful kurtas and majestic sherwanis to intricately crafted saris, lehengas and salwar suits, redefine ethnic style whether it's for him or her. Get festive, get fabulous at Bavri and Kora at Meena Bazaar, your favorite wedding shopping destination.
1: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से sea facing view, फिर infinity pool या gym और सीधा spa and recovery. एक game paddle या tennis. शाम में clubhouse और रात family के साथ. और residents के लिए private yachts, जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. Shahrukh's by Danube, fully furnished residences starting at 1.65 million dirhams. Live life king style.
2: Have you got what it takes to say stop?
3: Are you kidding?
4: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2.
2: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
5: Golden dreams begin with Big Ticket.
6: A guaranteed 25 million dirham grand prize.
5: 5 consolation prizes, 200 grams of 24 karat gold each.
6: And more gold to win in weekly e-draws.
5: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams with Big Spin.
6: Buy your ticket now at bigticket.ae.
7: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
10: बारिश होने के चांसेस हैं इस हफ्ते में. दैट्स व्हाट द एनसीएम हैज सेड. वेदर वाइज राइट नाउ इट्स बीन अ मोस्टली क्लाउडी स्टार्ट टू दिस ट्यूसडे मॉर्निंग. ह्यूमिडिटी इज एट 58%. इट्स 32 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. विंड्स ब्लोइंग एट 16 किलोमीटर्स पर आवर. इट्स गोना बी क्लाउडी फॉर द रेस्ट ऑफ दिस ट्यूसडे. हाईज ऑफ 36, लोज ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस.
2: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2. बिग 106.2. सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae.

0: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
5: Again? The car's not starting.
6: I think the battery's gone.
5: Then stop guessing. Get Solite batteries.
6: What's special?
5: Premium Korean Tech. Zero maintenance. Perfect for this heat.
6: Wow, that's smooth. Where do I find it?
5: Auto Pro Fast Track Dialer Battery, Auto Studio, any major auto store. Solite batteries. Power you can trust. Distributed by AMAP Group.
7: Hey, jaldi hata, mera khadana. Jal hata. Jaldi hata.
8: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
9: It is 8:46 on the clock on this Tuesday. Let's take a look सबसे पहले at the junction of 44 and 311. यहाँ पर आज सुबह काफी ट्रैफिक है अराउंड स्पोर्ट्स सिटी, हेडिंग साउथ आफ्टर अरेबियन ब्रांचेस ऑन 311 यूल फाइंड कंजेशन. देन जेबीटी E44 पर इन बोथ डायरेक्शंस अराउंड जेबीसी जेबीटी यूल फाइंड नॉर्थ एंड साउथ बाउंड ट्रैफिक. टॉकिंग अबाउट 44, हल्का बुल्का ट्रैफिक आपको मिलेगा गोइंग टूवर्ड्स D3 फ्रॉम रसल कोर. एंड देन 66 पे आज हेडिंग टूवर्ड्स अल जदाफ क्रीक एरिया पे आपको ट्रैफिक मिलेगा. देन देयर इज ट्रेड सेंटर हेडिंग साउथ E11 पर अ बिट ऑफ कंजेशन टूवर्ड्स सतवा.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Breakfast with Sid. Now is Shahrukh's Residences by Danube on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Namaskar, 11 minute on this 13th of October. It's now time for the Big Bollywood Quiz. I found this real gem of a scene, a comedy scene hai, jisme Irfan Khan ko Deepak Dobaryal kuch सिखा रहे हैं, कुछ अटपटी चीज सिखा रहे हैं. सीन को सुनिए एंड टेल मी इफ यू आर एबल टू फिगर आउट कि कौन सी ये फिल्म है जिसमें इरफान खान, दीपक डोबरियाल. लिसन टू दिस, टेल मी फिल्म का नाम. टू विन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज.
2: गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है. हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब. ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब है.
3: नाम क्या है आपका?
2: हमारा, अरे भाई, नाम तो बड़े काम वालों का होता है.
1: नाम तो बड़े काम वालों का होता है. ये गरीब कैसे होते हैं ये सिखाते हैं दीपक डोबरियाल इरफान खान को इन विच अ फिल्म. या फिल्म का नाम अगर आपको पता है तो गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062 पे कॉल करके बताओ फिल्म का नाम अगर आप जीतना चाहते हैं. टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज.
0: बिग 106.2.

0: The Big Breakfast with Sid. Now is Shahrukh's Residences by Danube on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: I've got Karan with me on the phone line. Good morning, Karan. Kya hal chal hai?
2: बस बढ़िया. आप बताओ कैसे चल रहा है.
1: I need your advice. I need your help.
2: Yeah, please go ahead.
1: मुझे यार आज बस अभी 30 seconds ago I got the message जिसका हम सबको डर होता है. मुझे पार्किंग फाइन लग गया यार. क्या करूं यार. करण हर किसी के साथ ऐसा होता है. बट व्हाट इज योर टेक्निक टू काइंड ऑफ गेट ओवर द 150 दिरहम की चपत. कुछ है क्या टेक्निक आपके पास. हाउ डू आई गेट ओवर इट.
2: Nothing, just keep eye on your reminders on your mobile.
1: Okay.
2: If you are doing a parking through mobile, so reminder pe aap dhyan do. But that's the only way to get out of all the parking fines.
1: Yeah. एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ. अब जो फाइन लग गया है तो अब मैं पार्किंग लगाऊं कि पूरे दिन भर का फाइन लग चुका है अब नहीं लगाऊं.
2: You can keep your car for 24 hours for that.
1: अच्छा 24 hours अब मेरे को पार्किंग लगाने की जरूरत नहीं है.
2: नहीं है.
1: Are you sure about this?
2: Yes.
1: Fine, लगा तो फिर आपको आपके घर भेजूंगा मैं रिसीट. मुझे लग रहा है कि इस दुनिया के बहुत मजे में खिलाड़ी हैं करण. हाँ बताओ महीने में कितनी बार लगता है आपको. बड़ा ज्ञान तो दे रहे हो कि पुट रिमाइंडर ऑन फोन एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन टेल मी ऑनेस्टली हैंड ऑन हार्ट व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गॉट द 150 दिरहम की चपत. टेल मी
2: 150 दिरहम का फाइन. आई गॉट इट ऑन द लास्ट 2 months ago.
1: चलो नॉट बैड करण. नॉट बैड एट ऑल. दैट इज वाई आप इतना जानते हैं इस दुनिया के बारे में. चलो बॉलीवुड के बारे में भी काफी जानते हैं करण. एंड लास्ट टाइम मैंने एक सीन सुनाया था. एक बार फिर से सुनते हैं. बहुत ही अमेजिंग सीन है ये.
3: गरीबी में जीना कला है. हम सिखाएंगे तुम्हें क्योंकि हम खानदानी गरीब है. हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब. ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए. नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं.
1: शुद्ध गरीब. दीपक डोबरियाल कौन सी फिल्म में ज्ञान दे रहे हैं जैसे आप मुझे दे रहे थे इन टू इरफान खान. बताओ.
2: हिंदी मीडियम.
1: एब्सोल्युटली करेक्ट. कांग्रेचुलेशंस. दो ओपन मूवी टिकट्स आपने जीत लिए. नाउ यू कैन गो एंड वॉच एनी मूवी जो भी आपको देखनी है एट टाइम ऑफ योर चूजिंग. सो कांग्रेचुलेशंस. एंजॉय योरसेल्फ एट द मूवीज.
2: थैंक यू वेरी मच.
1: पक्का पार्किंग नहीं लगाओ ना आप. अब जो मुझे फाइन लग गया है क्या मुझे पार्किंग लगाने की जरूरत है.
4: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी. एक गेम पैडल या टेनिस. शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ. और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख्स बाय डैन्यूब फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 million dirhams. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
5: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
6: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
7: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events. Creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
0: The Big Mix. Miss kiya gaya?
8: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
9: हाय मोनिका।
10: हाय।
9: आपकी रील्स देख देख कर हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपकी रील्स देख कर मैं मूवी देखने जाती हूँ एंड आई फील ऑलमोस्ट सेम सेम। अच्छा बताओ भाई, हमें कुछ रिकमेंडेशंस फॉर बॉलीवुड फिल्म्स जो हॉरर जॉनर की हैं, जिसको देखकर एकदम दिल दहक जाए।
10: देखो मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है कि मुझे भूत प्रेतों की बातें करने में मजा बहुत आता है, तो जहाँ भूत दिखते हैं वहां मैं पहुंच जाती हूँ। तो बॉलीवुड की जो हॉरर फिल्म है ना, वो देखने का अलग ही मजा है, क्योंकि उसमें गाने भी आ रहे हैं, चटपटा रोमांस भी चल रहा है, तो मजेदार तो होती है। तो बॉलीवुड में जो मेरी फेवरेट हॉरर फिल्म्स हैं, दैट इज 1920, ओ माय गॉड, द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में जो हनुमान चालीसा है भाई साहब, गूज़बम्प्स। देन 13 भी, इट्स द ओनली हॉरर फिल्म फ्रॉम इंडिया जिसने एक्चुअली में मुझे डराया था। इट्स अ साइकोलॉजिकल हॉरर और इसमें भूत नहीं है, एंड में बताते हैं क्या हो रहा था, बट अ वेरी गुड फिल्म। एंड देन भूत उर्मिला की, इफ यू हैव वॉच्ड, तो ये मेरे को बहुत, उसमें भूत से ज्यादा उर्मिला देख के डर।
11: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM, द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: It is 9:30 dot on the clock and let's take a look सबसे पहले at the capital Abu Dhabi. यहाँ पर आपको traffic मिलेगा the usual Muzaffar Industrial E30 पर and a bit of congestion Rabdan area में, and then E11 heading north going towards Banias, you'll find a bit of congestion out there. चलते हैं दुबई शारजा की ओर। आज सुबह से रोज के मुकाबले ज्यादा ट्रैफिक JBT पर, अब मामला सुलटता हुआ नजर आ रहा है। 44 गोइंग टुवर्ड्स 311 वे डाउन साउथ एट द जंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स सिटी, एंड देन यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन आज एट 66 अल जद्दा की तरफ। नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक आपको मिलेगा दुबई अलेन रोड पर, अभी भी थोड़ा बहुत कंजेशन है ऑल द वे टिल सिटी सेंटर मिर्दिफ, स्लो मूविंग ट्रैफिक फ्रॉम सिटी सेंटर ज़ाया, एंड देन साउथ बाउंड ट्रैफिक एट अल नादा इंटरचेंज 1 ऑन E11.
12: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
11: Big 106.2.

0: आया रे तू
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: प्ले एट द कैपिटल अबू धाबी. यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगा एट द यूजुअल गोइंग टुवर्ड्स बनियास हेडिंग नॉर्थ ऑन E11. अभी अब अनयूजुअल ट्रैफिक विद दिस टाइम ऑफ द डे. 7 मिनट्स का डिले एट रब्दान एंड दिस इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द शेख जायद ग्रैंड मॉस्क हेडिंग वेस्ट. देन चलते हैं दुबई शारजा की ओर हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड दुबई फ्रॉम शारजा. 311 E11 का ट्रैफिक अब काफी सुलटता हुआ दिख रहा है. अराउंड 5 to 6 मिनट्स का डिले एट बोथ दीज आर्टरीज. अबिर ऑफ कंजेशन राइट आफ्टर सिटी सेंटर मिर्दिफ नादर हमार एंड गोइंग टुवर्ड्स इंटरनेशनल सिटी ऑल्सो 2-3 मिनट की देर यहाँ पर. एंड शारजा इंडस्ट्रियल S112 पे अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया 6 यू विल फाइंड अ 5 to 6 मिनट डिले एंड दिस इज इन बोथ डायरेक्शंस हेडिंग ईस्ट एंड वेस्ट.
1: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 10:09।
1: बॉलीवुड

0: The big breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Fully furnished residences starting from 1.65 million dirhams. Live life, king style.
1: Golden dreams begin with Big Ticket.
2: A guaranteed 25 million dirham grand prize.
1: 5 consolation prizes, 200 grams of 24 karat gold each.
2: And more gold to win in weekly intros.
1: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams with Big Spin.
2: Buy your ticket now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2. Listen to her every day.
4: Mugambo, खुश हुआ
5: आमिर. मैंने बोला आमिर खान, कहते नहीं आमिर जान. तो कितनों की जान है आप?
6: मॉम की जान.
5: ये देखो, ये जो इन्होंने एकदम संभाला है ना, घुमा के, बहुत बढ़िया. करते क्या है आप आमिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस. फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट. 3 फ्रूट्स विद द लेटर ए.
6: एप्पल.
5: और अरे, नॉट वेरी गुड विद फ्रूट्स आल्सो. 3 चीजें जो पनीर से बनती हैं.
6: पालक पनीर.
5: और ओए होए, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा आमिर खान. ये नहीं हो पाएगा आपसे.
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Good morning. There's still a bit of congestion at E88, and this is going towards Safe Zone and a bit further going towards Sharjah International Airport. 3 se 4 minute ki der aapko milegi. Also heading south after Ajman Industrial 2. This is E11 going towards the junction of 88. Then there's the usual E11, 311 heading south going towards Dubai from Sharjah. 5 se 6 minute ki der. Also बिजनेस बे मेट्रो स्टेशन के आसपास की सड़कें बिजी एज एवर. एंड D75 हेडिंग ईस्ट गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रेम यू विल फाइंड 5 से 6 मिनट की देर.
8: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.

0: अपना पगला दूंगा पूरे देश को।
1: राजो
2: छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबू राव गणपत राव आपते बोल
3: 106.2 द

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: Get ready to celebrate Diwali like never before. The Big Diwali Mela is back. On Saturday, 31st October, join Team Big at Oasis Center Dubai for a spectacular evening filled with fun, games, a fabulous fashion show, spin the wheel and loads of festive entertainment. Bring your family, bring your friends and come make unforgettable Diwali memories with Big 106.2. The Big Diwali Mela, where the celebrations are always big. Presenting sponsor, Papa John's, powered by Solite Battery. Venue partner, Oasis Mall, Dubai. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.in.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: शादी हो या कोई भी त्योहार, बावरी और कोरा से दिखो शानदार हर बार. From graceful kurtas and majestic sherwanis to intricately crafted saris, lehengas and salwar suits, redefine ethnic style whether it's for him or her. Get festive, get fabulous at Bavri and Kora at Meena Bazaar, your favorite wedding shopping destination.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने.
3: दो या चार.
2: चार.
3: कब तक वापस लड़ेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में.
3: चार या
2: पाँच. पाँच.
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन. ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा. द बिग बिंज विद सिड. प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ.
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
1: द बिग मिक्स मिस किया गया?
3: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
4: हाय मोनिका।
5: हाय।
4: आपकी रील्स देख देख कर हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपकी रील्स देख कर मैं मूवी देखने जाती हूँ, एंड आई फील ऑलमोस्ट सेम सेम। अच्छा बताओ भाई, हमें कुछ रिकमेंडेशंस फॉर बॉलीवुड फिल्म्स जो हॉरर जॉनरा की हैं, जिसको देखकर एकदम दिल दहक जाए।
5: देखो, मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है कि मुझे भूत प्रेतों की बातें करने में मजा बहुत आता है, तो जहाँ भूत दिखते हैं वहां मैं पहुंच जाती हूँ। तो बॉलीवुड की जो हॉरर फिल्म है ना, वो देखने का अलग ही मजा है, क्योंकि उसमें गाने भी आ रहे हैं, चटपटा रोमांस भी चल रहा है, तो मजेदार तो होती है। तो बॉलीवुड में जो मेरी फेवरेट हॉरर फिल्म्स हैं, दैट इज 1920। ओ माय गॉड, द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में जो हनुमान चालीसा है भाई साहब, गूज़बम्प्स। देन 13 भी, इट्स द ओनली हॉरर फिल्म फ्रॉम इंडिया जिसने एक्चुअली में मुझे डराया था। इट्स अ साइकोलॉजिकल हॉरर और इसमें भूत नहीं है। एंड में बताते हैं क्या हो रहा था, बट अ वेरी गुड फिल्म। एंड देन भूत, उर्मिला की, इफ यू हैव वॉच्ड, तो ये मेरे को बहुत, उसमें भूत से ज्यादा उर्मिला देख के डर।
1: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM, द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: मैं दीवानी कुछ न जाना, मस्त होके गावा लाके बंदे।
0: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 1:07।
2: Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. T&C apply.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: जब मैं सुबह उठी थी, आई वाज लाइक गॉड ब्लेस यार, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, लेकिन फिलहाल इट्स 36 डिग्रीज विद 36% ह्यूमिडिटी। ट्विनिंग हो रही है भाई।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 बिग 106.2

0: Chase Banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ Avni आपके साथ. This is the Big Mix and मैं थक चुकी हूँ यार Instagram पर animal AI generated videos देख कर जहाँ पे अलग story चल रही है. Of course I am addicted to that. मैं रात के 1 बजे देख के वही scroll कर रही होती हूँ. But this is the time जहाँ पे मुझे AI पे ना ऐसे बहुत ही गर्व होता है, बहुत ही proud होता है. Especially Dubai. That's how you Dubai it actually. Electric pods की बात कर रही हूँ मैं. Driverless electric pods जो कि फिलहाल ब्लू वाटर्स आइलैंड पर 4 वीक का ट्रायल चल रहा है. कैपेसिटी होगी 4 to 6 पैसेंजर्स. स्पीड होगी अप टू 50 किलोमीटर पर आवर. बेसिकली ये अलग डेडिकेटेड ट्रैक्स पर चलेंगे जिसका मतलब है आपको रोड ट्रैफिक एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा. एंड जस्ट नॉट दैट, इज 4 वीक ट्रायल के बाद फ्यूचर रूट्स जो हैं RTA इज एक्सप्लोरिंग कनेक्शंस टू JVC, दुबई फेस्टिवल सिटी, बिजनेस बे एंड मोहम्मद बिन राशिद सिटी, इंक्लूडिंग लिंक्स टू मेट्रो स्टेशंस. अब हमें हिंदी वाला सफर नहीं करना, अब हमें ये जवानी है दीवानी का बनी बने बैठे रहना है. That's how you Dubai it. I'm really, really, really excited to travel in these driverless electric pods. If you are, call karo mujhe 800-1062 par. Keep it locked to Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, The Beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
3: मेरठ की एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट बहू और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल दे।
4: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
3: Amazon MGM Studios एंड कलर येलो प्रोडक्शन प्रेजेंट नई नवेली, स्टारिंग यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, सुनीता राजवर एंड अदर्स। रिलीजिंग 16th अक्टूबर इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अल निसर सिनेमा फिल्म। टू विन इनवाइट्स, कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
5: Listen to her every day.
6: Mugambo, खुश हुआ।
7: निखिल, आपके हिंट्स हैं, मैं एंगेजमेंट से लेकर संगीत संध्या तक सेलिब्रेशंस में खूब नजर आती हूँ। मेरे मल्टीपल पीसेस होते हैं, देयर्स अ टॉप, देयर्स अ बॉटम एंड अ स्टनिंग दुपट्टा। मेहंदी हो या फिर सन डाउनर, मुझे फेस्टिव लुक के लिए स्टाइल किया जाता है। मैं फ्लोई हूँ, मैं ग्लैमरस हूँ एंड यूजुअली मैं चोली के साथ पहनी जाती हूँ। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट?
8: लहंगा।
7: मुझे लगा कि साड़ी या सलवार बोलोगे, बट लहंगा बोल ही दिया पहली बार में।
8: थैंक यू।
7: 500 दिरहम का वाउचर आपका हुआ कोरेसी ऑफ बावरी एंड कोरा। एंड आई एम टेलिंग यू, वहां पे आपके लिए भी बहुत स्टनिंग कुर्ताज एंड शेरवानी है। सो गो एंड हैव अ लॉट ऑफ फन, दे हैव गॉट अ स्टनिंग कलेक्शन।
2: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
9: Hey, jaldi hata, tera khata na. Chal hata. Arey jaldi hata.
2: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
10: Shrikzaz Road पर there is slow traffic around Zabil Park and Defence Roundabout. Alkiel Road पर there is congestion between Medan and Dubai Hill State with additional delays around Russell Court. Sheikh Mohammed bin Zayed Road, there is moderate traffic around Mirdif and Global Village. Slow moving vehicles near Motor City and JBC. कहीं और फंसे हो, let me know, call करके 800-1062 पर.
11: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.
12: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
2: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and it's done, bro. कहने वाले finally last season में आने वाले हैं, feature होने वाले हैं for the episode 1 of Coffee with Karan जो कि कल release होगा. कहाँ पर? Stars Play पर. Season 9 is gonna be the last one and that is why Karan Johar जो हैं first episode में लेकर आने वाले हैं. It's done, bro. Salman Khan it is. देखो यार, प्यार तो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं गॉसिप से, क्योंकि कॉफी विद करण के काउच पर जितनी टी स्पिल होती है
3: तेरे प्यार में, तेरे प्यार में दिल चाहता है बस.
2: The gossips and the tea coming up your way on 14th October. कल यानी कि देखेंगे, चस्के लगते हैं यार. Keep it locked.

0: ऐसी भी है मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
1: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
1: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: कोई भूला बिसरा शख्स ही होगा यार जिसको ये फिल्म पसंद नहीं है। तुम्हारी और मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स, मैं अपनी फेवरेट हूँ जब भी मैं से तुमसे ही, ट्रैक बाय मोहित चौहान।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ, this is the Big Mix and absolutely correct song to play for this weather. Forecasted है कि शायद बारिश हो सकती है in eastern and western regions of UAE, which makes it Fujairah, Khurfakan, Hatta and Alain. लेकिन काफी windy situation तो यार यहाँ भी चली रही थी। कुछ लोगों के लिए होता है यार कि बारिश काफी gloomy weather होता है, लेकिन for me वैसे भी हम कड़क लवर्स को बस कड़क पीने का एक एक मौका, एक बहाना चाहिए यार। That's exactly how my heart dances, जो मुझे बारिश बस बस आवाज पड़ जाती है। Keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:06।
1: Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम, और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस, और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स, जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: बर्फ की तो नहीं, लेकिन हाँ बारिश की बातें जरूर चल रही हैं। 36 डिग्रीज आउट देयर एज ऑफ नाउ विद ह्यूमिडिटी 35%। बेसिकली ह्यूमिडिटी काफी कम है और कुछ कुछ रीजन्स पर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट पर बारिश हो सकती है। दैट्स बीन फोरकास्टेड, बट लेट्स सी। कीप इट लॉक टू बिग 106.2।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
7: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
2: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: Participate in the Big Diwali Mela contest for a chance to be part of the kids' fashion show and win exciting prizes. The Big Diwali Mela, presenting sponsor, Papa John's, powered by Solite Battery. Venue partner, Oasis Mall, Dubai. Only on Big 106.2.
3: The Big Mix with Avni on Big 106.2.
4: The Beat of Bollywood.
5: बिग 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड बिग दिवाली मेला के लिए आज मैंने कॉल किया है मानसी को. हाय मानसी.
6: हाय अवनी, हाउ आर यू?
5: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
6: बहुत बहुत बढ़िया, और आपका कॉल सुन के तो और ज्यादा बढ़िया हो गए.
5: क्या करते हैं मानसी आप?
6: I am soon to be a numerologist.
5: Ooh, nice. मैं कह रही हूँ रीडिंग कराने आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ. नॉर्मल अंक.
6: नॉर्मल अंक बढ़िया ही है, गुस्सा थोड़ा ज्यादा है मगर बाकी सब बढ़िया है.
5: गुस्सा आप पे नहीं करूंगी मैं गुस्सा. Having said that, आप अपने बच्चों पे गुस्सा करते हो?
6: नहीं, मतलब कभी कभी. It's just like जब बदमाशियां होती है, बट अब मेरा बच्चा लाइक ही इज 11 इयर्स ओल्ड, ही अंडरस्टूड मी वेल कि मम्मा कहाँ गुस्सा हो सकती है कहाँ नहीं, तो ही कंट्रोल हिमसेल्फ.
5: गुड बॉय बन के रहता है मतलब वो.
6: हाँ, गुड बॉय बन के रहता है.
5: And ये fashion show के लिए are you excited or he is excited to participate?
6: Both of us are very excited.
5: ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं. मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी, यू हैव टू आंसर मी. ओके
6: ओके.
5: व्हाट कलरफुल पैटर्न्स आर ड्रॉन ऑन द फ्लोर यूजिंग कलर्ड पाउडर और फ्लावर पेटल्स?
6: व्हाट कलरफुल पैटर्न्स? रंगोली.
5: ये तो बड़ा ही इजी था आपके लिए.
6: दैट वाज जस्ट अ वाइल्ड गेस.
5: कम ऑन, आप रंगोली बनाते हो?
6: नहीं, आई एम नॉट क्रिएटिव लवर. नहीं, मुझे आती नहीं है. माय हस्बैंड मेक्स रंगोली बट नॉट मी.
5: नंबर लिख देना यार रंगोली पे, कुछ भी कर सकते हैं.
6: नहीं नहीं, माय हस्बैंड मेक्स रंगोली, मतलब ही लव्स टू, यू नो, ही इज वेरी क्रिएटिव, सो ही लव्स टू प्ले विद द कलर, सो या, बट नॉट मी. बट आई डेकोरेट होम.
5: Please send me the pictures of that rangoli, and I think so from your husband it will be passed to your son.
6: Yeah, husband and son both. I mean, they decide, you know, the designs and everything and the colors. So both of them are very creative.
5: Perfect. And kya naam hai aapke bete ka?
6: Vihan.
5: Vihan. Okay, so Vihan register ho chuka hai for this fashion week jo hone wala hai Big Diwali Mela mein.
6: Thank you so so. Much, really made my day. Thank you.
5: Thank you.
6: Thank you so much for this call. Thank you, and have a great, great, great day ahead. Thank you
5: so much, Mansi. Thank you. Bye.
6: Yeah. Bye. Take care.
5: If your kids want to participate और बनना है उनको मिस्टर पटाका या फिर मिस फुल जड़ी, आपको बस टाइप करना है बिग दिवाली स्पेस योर नेम और भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062. बिग दिवाली मेला इज गोना बी बिगर दिस टाइम. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। Big 106.2

0: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: विशाल ददलानी का ट्रैक सॉन्ग नाम था एक जुनून, और दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें फुल लॉन जुनून है।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 से मैं हूँ अवनि आपके साथ। दिस इज द बिग मिक्स एंड दिवाली सेलिब्रेशंस दिस टाइम इज गोना गेट बिगर विद द बिग दिवाली मेला विच इज सो बैक। ज्वाइन कर सकते हो आप बिग 106.2 की टीम ऑन सैटरडे 31st अक्टूबर एट ओएसिस मॉल दुबई फॉर एन इवनिंग फुल ऑफ फन, games, spin the wheel, loads of festive entertainment and of course a fabulous fashion show as well. सिर्फ मुखड़ा मत देखो, यहाँ पर आओ हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करो। आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हो। बिग दिवाली मेला प्रेजेंटेड बाय पापा जॉन्स, पावर्ड बाय सोलाइट बैटरीज विद ओएसिस मॉल दुबई एज अ वेन्यू पार्टनर। द बिग दिवाली मेला जहाँ पर सारी सेलिब्रेशंस हमेशा बिग होती हैं। कीप इट लॉक टू बिग 106.2 पार ऑफ फन एशियाज़ ग्लोबल मीडिया नेटवर्क।

0: मंजिल बन जाता है।
1: शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्स्ट रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम, और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स, जहां सफर

0: तुम बीमार हो?
1: No.
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, फिर उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे है सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, थरथराहट, टपकपाहट, भरभराहट, टपकपाहट, झटपटाहट, झटपटाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगा

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:09
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: to The Beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग भी, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.

0: सतरंगा इश्क मेरे और मेरे खाने के बीच.
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. इट्स 3 PM पीक लंच आवर टाइम एंड आप जीत सकते हो ओपन मूवी टिकट्स. एंड यार लंच टाइम पर होता है, अगर आपने खाना खा लिया है गेम खेलने के बाद आपको भूख लग सकती है. डिस्क्लेमर दे रही हूँ, अगर अभी तक खाना नहीं खाया है तो भैया तगड़ी भूख लगेगी. All you have to do is give me a message on this WhatsApp number 0543091062. मैं करूंगी आपको कॉल. खेलेंगे हम खाओ पियो ऐश करो, रैपिड फायर फूड गेम, और उसके बाद आप जीत सकते हो ओपन मूवी टिकट्स. भाई लंच की बात हो रही है और खाने की बात, द कलरफुल पैलेट आई हैव. आई स्टिल थिंक यू आर बिगर एंड अ बेटर फूडी देन मी. मैसेज करो मुझे यहाँ पे 0543091062.
2: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागी.

0: Hollywood. The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetour T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
2: शादी हो या कोई भी त्योहार बावरी और कोरा से दिखो शानदार हर बार फ्रॉम ग्रेसफुल कुर्ताज एंड मजेस्टिक शेरवानीज टू इंट्रिकेटली क्राफ्टेड साड़ीज लहंगाज एंड सलवार सूट्स रीडिफाइन एथनिक स्टाइल वेदर इट्स फॉर हिम और हर गेट फेस्टिव गेट फैबुलस एट बावरी एंड कोरा एट मीना बाजार योर फेवरेट वेडिंग शॉपिंग डेस्टिनेशन
3: लिसन टू हर एवरी डे
4: मोगेम्बो खुश हुआ
5: निखिल आपके हिंट्स हैं मैं एंगेजमेंट से लेकर संगीत संध्या तक सेलिब्रेशंस में खूब नजर आती हूँ मेरे मल्टीपल पीसेस होते हैं देयर इज अ टॉप देयर इज अ बॉटम एंड अ स्टनिंग दुपट्टा मेहंदी हो या फिर सन डाउनर मुझे फेस्टिव लुक के लिए स्टाइल किया जाता है मैं फ्लोई हूँ मैं ग्लैमरस हूँ एंड यूजुअली मैं चोली के साथ पहनी जाती हूँ व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट
6: लहंगा
5: मुझे लगा कि साड़ी या सलवार बोलोगे बट लहंगा बोल ही दिया पहली बार में
6: थैंक यू
5: 500 दिरहम का वाउचर आपका हुआ कर्सी ऑफ बावरी एंड कोरा एंड आई एम टेलिंग यू वहां पे आपके लिए भी बहुत स्टनिंग कुर्ताज एंड शेरवानी है सो गो एंड हैव अ लॉट ऑफ फन दे've गॉट अ स्टनिंग कलेक्शन
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
7: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है
8: मुझे खुद का पता था यार मगर हूँ तो हूँ
0: You are listening to The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट
11: बर्फ तो नहीं लेकिन हाँ बारिश के आसार लग रहे हैं फिलहाल इट्स क्लाउडी 36 डिग्रीज राइट नाउ बट विद ह्यूमिडिटी इट्स 38% क्लाउडी हो चुका है लेट्स सी यार यहाँ पर कहाँ पर बारिश होती है कौन से एरिया में
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड वी गोना प्ले खाओ पियो ऐश करो. आज मेरे साथ हैं परमजीत. हाय परमजीत.
3: हाँ जी सत श्री अकाल जी. अवनी जी
2: सत श्री अकाल जी. कैसे हैं आप?
3: हाँ जी बढ़िया.
2: क्या करते हो आप यहाँ पे?
3: मैं जी अकाउंट्स में हूँ.
2: यहाँ पे मेरे शॉपिंग एक्सपेंसेस हो नहीं पा रहे कैलकुलेट क्योंकि मुझे घर से गंदी आदत पड़ी हुई है शॉपिंग करने की फालतू चीजें. आप अकाउंट सीख के आए हो वहाँ से?
3: हाँ जी बिल्कुल. क्या करें जो करना था वो तो कर नहीं सके तो फिर अकाउंट ज्वाइन करना पड़ गया.
2: बढ़िया है. अच्छा वैसे तो ये एक स्टीरियोटाइप है. एक्चुअली मैं इसको ऑलमोस्ट सच मानती हूँ कि पंजाबियों को खाने का बहुत शौक है.
3: बिल्कुल जी नो डाउट.
2: अनडाउटेड मतलब ये स्टीरियोटाइप नहीं है ये सच बात है.
3: सच है जी बिल्कुल सच है. खाने से तो सभी को प्यार होना चाहिए जी. खाना ऐसी चीज है सबके मूड बदल देता है. वो
2: बात तो सही है. अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं ना अपने टक्कर के फूडी से बात कर रही हूँ. मजे आ गए. अच्छा ठीक है मैं आपको ना दो ऑप्शन दूंगी. आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है खाने का पर फटाफट करना है. ठीक है सोचना नहीं ज्यादा.
3: ओके जी.
2: यस परमजीत क्या चूज करोगे? छोले भटूरे या अमृतसरी कुलचा?
3: छोले भटूरे जी.
2: छोले भटूरे या सरसों का साग मक्की की रोटी?
3: सरसों का साग मक्की की रोटी ना. लस्सी हो जाए तो और कोई बढ़िया.
2: गुड़ से व्हाइट मक्खन रह गया. ओके सरसों का साग मक्की की रोटी या राजमा चावल?
3: मक्की की रोटी.
2: मक्की की रोटी या दाल मखनी विद बटर नान?
3: मक्की की रोटी.
2: मक्की की रोटी या शाही पनीर विद रोटी?
3: मक्की की रोटी स्टिल.
2: सरसों का साग या कढ़ाई पनीर?
3: सरसों का साग जी.
2: सरसों का साग या बटर चिकन?
3: सरसों का साग हाफ ते हाफ बटर चिकन.
2: एक एक एक
3: होता है फिर बटर चिकन.
2: बटर चिकन या पनीर भुर्जी?
3: बटर चिकन.
2: बटर चिकन या कड़ी पकौड़ा?
3: ओ भैया यार बड़ा कंफ्यूज करता है आप. बटर चिकन.
2: बटर चिकन या पंजाबी सोया चाप?
3: पंजाबी सोया चाप.
2: ओके पंजाबी सोया चाप या चिकन लबाबदार?
3: चिकन लबाबदार.
2: सरसों का साग ऑलमोस्ट जीतने वाला था लेकिन फिर चिकन आ गया बीच में. भाई मुझे बड़ा मजा आता है खेल के. मुझे खुद को क्रेविंग शुरू हो जाती है कि मेरा मन कर रहा है मैं खा लूं अब कुछ.
3: बिल्कुल जी बिल्कुल. खाना ऐसी और आपने मेन्यू ऐसा बताया अभी ये मतलब हर एक चीज लाजवाब है उसमें. कुछ भी नहीं छोड़ सकते.
2: कैफे खोल लेती हूँ रेस्टोरेंट ये सारा कुछ रखूंगी. आप आओगे?
3: बिल्कुल जी बिल्कुल. मैं आऊंगा क्या? मैं फ्री एडवर्टाइजिंग करूंगा
2: उसकी.
3: लंच के लिए चार्ज मत करना बस.
2: ना ना ले रेस्टोरेंट खोलूंगी मैं आपको खाने के लिए चार्ज करूंगी. क्या बात कर रहे
3: जी. बहुत दुबई में तो बहुत खाने पीने वाले शौकीन लोग हैं जी. बिल्कुल जी बहुत बढ़िया चलेगा रेस्टोरेंट. बहुत
2: बढ़िया. तो सही है बात तो सही है. आपने लंच कर लिया था?
3: हाँ जी कर लिया.
2: क्या खाया था आपने?
3: आज हमने वही हमारे तो डीजल वाले जो फेवरेट होते हैं पंजाबी के राजमा चावल.
2: ओहो पर अब क्या ऑर्डर होने वाला है? इतना कुछ सुन लिया है.
3: अभी शाम का तो पता नहीं. अभी मैडम से पूछेंगे ऑफिस के बाद में क्या बना रहे हैं.
2: ठीक है. इवनिंग स्नैक में क्या खाते हो फिर?
3: इवनिंग में जी चाय पकौड़े.
2: चाय पकौड़े दैट्स पेट.
3: हां जी.
2: इतनी बात कर लिया ना आई स्वेयर परमजीत मैं अभी पकौड़े करने वाली हूँ ऑर्डर क्योंकि एक तो मौसम भी काफी विंडी हो रहा है.
3: विंडी हो रहा है बारिश का भी प्रेडिक्शन है जी. बिल्कुल करिए. और पकौड़े अगर मिर्ची हो जाए साथ में प्याज के तो बस फिर क्या नहीं.
2: बस बस बस बस हो गई. इतनी बात बहुत है क्योंकि उसके बाद मुझे अभी ऑर्डर करना है. फटाफट आने में थोड़ा टाइम लगेगा. थैंक यू सो मच परमजीत. थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस. एंड इफ यू वांट टू प्ले खाओ पियो ऐश करो विद मी ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी अ मैसेज ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062 एंड यू ऑल्सो हैव अ चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स.

0: तो फिर आओ, अब आ गए हैं तो मिस मत कर देना.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix. And जब भी मुझसे कोई पूछता है ना गिफ्टिंग के लिए कि अवनी तुम्हें क्या चाहिए, Now actually I have an answer कि मुझे इस कॉन्सर्ट की टिकट्स चाहिए.

0: मैं तो चाहूँ बॉर्डरलेस मेलोडीज की टिकट्स. किसकी बात कर रही हूँ मैं? दुबई. इट्स फॉर यू. टू लेजेंडरी वॉइसेस कमिंग टुगेदर ऑन वन स्टेज. पैंथियन प्रेजेंट्स बॉर्डरलेस मेलोडीज फीचरिंग द लेजेंडरी आबिदा परवीन एंड कैलाश खेर लाइव इन कॉन्सर्ट. टू लेजेंड्स वन स्टेज. Unforgettable musical evening. Calendars mark कर लो. Date है 13th November at Dubai World Trade Center. Tickets available हैं now on Platinum List. Wait मत करना बता रही हूँ. अपनी अभी की अभी book कर लो इससे पहले sold out हो जाए. Brought to you by Hop Events. Creating experiences that stay with you long after the music ends. Event made large with Big 106.2.
1: Haydariyam kalandaram mastam. Haydariyam kalandaram.
0: This could only and only happen in Dubai. Two legends, one stage. Abida Praveen, Kailash Kher. 13th November. Apni tickets abhi book karo. Till then, keep it locked to Big 106.2.

0: 2, The Beat of Bollywood.
1: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
0: The Big Jill.
2: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 35 डिग्रीज आउट देयर राइट नाउ विद क्लाउडी वेदर, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है फिलहाल बढ़ चुकी है 42% पर। तो क्या ये निशानी है कि हो सकता है इस क्लाउडी वेदर के साथ हल्की फुल्की बारिश भी हो जाए?
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 बिग।
4: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and कल 14th अक्टूबर को ग्लोबल विलेज वापस से खुलने वाला है सीजन 31 एंड मेरा बड़ा मन करता है मैं गेड़ी पे जाऊँ. एक तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है, वहाँ जाकर ना बस मेरा मन करता है मैं अपने पूरे हफ्ते के स्टेप्स पूरे कर लूँ. लेकिन वहाँ जाना इज ऑल्सो यू नो अ स्मूथ ड्राइव. एंड अगर आपको भी ड्राइव चाहिए यू कैन एक्चुअली लीज अ ब्रांड न्यू SUV फ्रॉम जटोर एंड स्कोडा विद प्राइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 199 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान. सिर्फ आपको विजिट करना है selfdrive.a पर. TNC अप्लाई. दिल चोरी सादा हो गया ग्लोबल विलेज में सामान ही इतना अच्छा मिलता है तो कैसे नहीं होगा यार दिल चोरी. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: आया रे तू
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड ग्लोबल विलेज जाते ही ना पता नहीं यार ऐसे जेब हल्की कैसे हो जाती है, मुझे अपने शॉपिंग फाइनेंसेस पे इतने सारे सवाल कैसे खड़े हो जाते हैं भाई, फीलिंग तो कसम से यही वाली आती है। लेकिन लेकिन लेकिन आपके शॉपिंग एक्सपेंसेस का मैं कुछ नहीं कर सकती। हैविंग सेड दैट, आप अपने पर्सनल लोन्स, मॉर्गेजेस और क्रेडिट कार्ड्स ये सही से डिसाइड कर सकते हो कैसे। यू ऑलरेडी नो अल्फ्रेड फ्रॉम insurancemarket.ae एंड नाउ अल्फ्रेड कैन एक्चुअली हेल्प यू कंपेयर दोज क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स एंड मॉर्गेजेस टू। बस आपको विजिट करना है creditmarket.ae पर या फिर आप कॉल कर सकते हो 800 अल्फ्रेड पर। तो अब डूबने वाली फीलिंग नहीं आएगी। कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: big. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
0: Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit UAQFTZ.com. Missed your morning buzz?
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
0: ये सुनो.
5: शेठ भाई, गुड मॉर्निंग. एकदम मस्त है, आप कैसे हैं?
6: तबीयत आवाज से तो आप बिल्कुल ही सही लग रहे हो, लेकिन जवाब जो आपने मुझे पहले दिया था उससे कुछ क्रॉस कनेक्शन हो गया एंड भाभी जी को आपको करेक्ट करना पड़ा. ये अक्सर होता है, कितनी बार भाभी जी आपको करेक्ट करती हैं लाइफ के अंदर?
5: अभी तो बेटर हाफ है मेरी, वो मुझसे बेटर है.
6: कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंसी हो रही है भाई, बता रहा हूँ थोड़ा बच के.
5: हाँ बिल्कुल, आज से थोड़ा सा मैं भी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग पे ध्यान रखूंगा.
6: थोड़ा ध्यान रखो भाई, थोड़ा ध्यान रखो नजरें. हाँ, बट यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल ड्राइविंग. लेकिन चक्कर ये कि मैंने
5: मतलब तो उन्हीं का होता है, पिक्चर तो उन्हीं को देखनी होती है.
6: मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप आंखें बंद करके पिक्चर हॉल में बैठने वाले हो?
5: हमें तो बस हमें जाकर के कहते ना, वो एक स्नैक्स का अरेंजमेंट करना है, गाड़ी में बिठा के इनको लेके जाना है, देखो वापस लेके आना है.
6: देखो ये हाय बेचारा का जो नाटक है ना, ये मैं कई सालों से करते आ रहा हूँ इस दुनिया का. मतलब आई बिन देयर डन दैट ब्रो, तो मेरे को पट्टी मत बनाओ, ठीक है ना. मजा तो राजेश भाई को ही आने वाला है सिनेमा हॉल के अंदर, लेकिन हाय बेचारा, ओ माय गॉड, हमारा तो काम धर्म पत्नी को मिसेज को खुश करना है भाई. हमारा काम सिर्फ आपको ले जाना पहुंचाना है और घर वापस लेके आना है सही सलामत है. फिर पॉपकॉर्न समोसा ये सब आपकी खिदमत में हाजिर है हम लोग हैं.
5: अभी सुन नहीं रही है ना, तो अपने बयान निकाल रहा हूँ.
6: नहीं वो पता नहीं है, सुन रही है, आवाज उन तक पहुंच रही है. आप टेंशन मत लो, आज का जवाब आपको मिलेगा. शाम को बताना मुझे कल सुबह कि आज शाम आपकी कैसी गुजरी है ना.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Sheikh Zayed Road E11 पर आपको लांदा वाली साइड पर काफी ट्रैफिक मिल जाएगा अगर आप शारजा वापस जा रहे हैं. उसके अलावा शेख मोहम्मद बिन जायद रोड E311 पर देयर इज हेवी ट्रैफिक अराउंड मिर्ज़िफ एंड मोहिजना. अलकील रोड E44 देयर इज हेवी कंजेशन अराउंड दुबई हिल्स एस्टेट, जुमेरा विलेज सर्कल, शेख राशिद रोड, करामा एंड दुबई मॉल एंड सिटी वॉक. उसके अलावा कहीं और फंसे हो लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर.
8: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
9: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
0: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स. फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम, पर आपको पता है ना मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ फॉलो ऑन 106.2 बिग एफएम का इंस्टा हैंडल, या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो अवनी आर के पेज पर AVNIY AAA. बाकी मिलती हूँ आपको कल फिर से 1 to 5 ओनली ऑन द बिग मिक्स. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, ये है Big Thrill, मैं हूँ Mansi. Tuesday की शाम है, 13th of October. Happy Navratri. All set to keep you company until 9. I'm sure a lot of you are heading back home right now because गरबा एंड डांडिया भी करना है. The vibe is absolutely amazing. Even when you're not in your country, you get to enjoy all the feels. I think that's the beauty of the UAE. फिलहाल while you're heading back home, there's so much happening आज शाम. वैसे कि shopping करनी है गरबे के लिए, दिवाली के लिए, करवा चौथ के लिए, इंडियन एथनिक वेयर की आई एम गोना सॉर्ट यू आउट. एक 500 दिरहम का वाउचर जीतने का मौका आपके पास. प्लस एवरी सिंगल इवनिंग व्हाइल यू स्टक इन द जैम, वी जैम हियर विद द कारियोकी. गाना आए आना आए. अगर आपको भी मेरी तरह गुनगुनाने का शौक है, देन दिस इज इट. किक स्टार्टिंग आज की शाम विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 5:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Start your morning like a superstar. The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Papa John's. Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert, 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
4: Your golden opportunity with Big Ticket.
5: This month, we have a 25 million dirham guaranteed grand prize.
4: Five prizes, 200 grams of 24 karat gold bars.
5: Plus, even more gold in our weekly e-draws.
4: Three big spin participants could each win up to 1 million dirhams in cash.
5: Make your golden move. Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
0: 34 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 29, वेरी वेरी क्लाउडी फिलहाल, ह्यूमिडिटी है 47% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me।

0: Chase Banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800-ALFRED. Alfred simplifies money.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, यह है Big Thrill. I'm Mansi. While you're heading back home, दो ढाई ढाई घंटे के ट्रैफिक में हम यहाँ पे जैम करते हैं. अब गाना आया ना आए, there's one thing that's very common with us Desis. We love अच्छा खाना and we love गाना गाना. This is a platform exclusively for people who enjoy singing. अब सुर लगे या ना लगे, अगर आपका दिल लगता है.
1: Karaoke.
2: Then it's time. टू karaoke. गाड़ी में बैठे बैठे अपना कॉन्सर्ट होस्ट करने का मौका आपको मिलता है. फिलहाल अगेन गाना विच इज वेरी वेरी पॉपुलर. इनफैक्ट बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे कि इस गाने पे karaoke कराओ.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, yeah, Big Thrill and Mansi. When you're stuck in the traffic jam, we jam here with the karaoke. And kafi jazbati ho gaya shadab. Phone uthate hi kaha hai, kya gana laga diya hai Mansi? Kya gana laga diya hai?
2: मौसम का असर और गाना वाह वाह
1: होए होए होए होए। तो आप थे किसी के लिए अक्षय कुमार 90s में?
2: अक्षय कुमार तो रहे और क्या करे, लेकिन फाइनली जिसके लिए रहे वही अभी साथ में है। तो आई मीन वो और दूसरा कोई
1: मैं समझ नहीं पा रही हूँ, साथ में है कि नहीं है?
2: नहीं, और मेरे प्यार बच्चे की मम्मा है वो।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: और वही मैं कह रहा हूँ, अक्षय कुमार रहे लेकिन बहुत ऑनेस्ट वाले अक्षय कुमार।
1: अक्षय कुमार भी अपनी बीवी के साथ 100% ऑनेस्ट है, जितना बाहर बाहर से दिखता है। वैसे भी देखो, मैं बोलूंगी तो लोगों को बुरा लगेगा, ऐसा कोई दुनिया का हस्बैंड नहीं है जो 100% अपनी बीवी को सच्चाई बताता है। ये तो मत बोलना शादा आपके मैं हूँ, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। फिलहाल अब आपको ये गाना इतना अच्छा लगता है और आप पुरानी यादों में खो गए हैं, तो चलिए आपकी आवाज में सुनते
0: हैं।
1: गला साफ कर लिया गया है दोस्तों, अब शादाब की आवाज में हम आपको ले जाने वाले हैं 90s के उस दौर में। हां जी,
2: वादा रहा सनम तुम दे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना।
1: वाह यार, बड़ा सुर है आपका तो।
2: थैंक यू।
1: मतलब एकदम दिल से निकला है गाना आपके।
2: दिल से निकला है, बहुत फेवरेट भी रहा है।
1: तो यही सुना के आपने उन्हें अपने चार बच्चों की अम्मा बनाया है या फिर कोई और गाना गाते थे?
2: नहीं, उस जमाने में नहीं थी वो, हम तो के बाद में, खैर वो हमारे लड़कपन का गाना है, लेकिन हाँ।
1: अच्छा, उस जमाने में ये गाना आप किसी और के लिए गाते थे, वो किसी और के बच्चों की अम्मा है ना?
2: पूरी सच्चाई नहीं बोलना चाहिए।
1: आपने गाना बहुत अच्छा गाया है, आई थिंक आज मौसम भी कुछ ऐसा है, इस गाने याद आ गई।
2: मौसम, यस यस, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस सॉन्ग, यू आर वेरी गुड।
1: थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग, इट वाज अमेजिंग, यू आर अ फैंटास्टिक सिंगर, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय शादाब।
2: थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।
1: This is what we do. हम पुरानी यादें पुराने गानों से ताजा करते हैं and I and I गाना गाते हैं। If you're into karaoke, give me a call 800-1062 पर।
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: देखो मौसम कमाल है और ऐसे मौसम में ड्राइव पे जाने का मजा ही कुछ और होता है. ऑफ कोर्स अवॉइड द एरियाज जहां ट्रैफिक हो, बट ड्राइव पे जाने के लिए इफ यू लुकिंग फॉर अ कार, आई हैव गॉट द परफेक्ट सॉल्यूशन. यू कैन नाउ लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटोर एंड स्कोडा विद प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1,999 दिरहम्स पर मंथ. दिस इज फॉर अ 12-month प्लान. आज ही विजिट कीजिए selfdrive.ae फॉर मोर डिटेल्स. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. फिलहाल यहां पर कमिंग अप इन जस्ट अ बिट. राघव चैतन्य की आवाज फ्रॉम कॉकटेल 2.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Two splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. InsuranceMarket.ae.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग की, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ King style.
4: Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit UAE. AQFTZ.com. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: एक घंटा 20 मिनट का डिले इस वक्त अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे हैं, मौरिफ टू मुहिसना, इट इज बम्पर टू बम्पर, हैवी हैवी ट्रैफिक है। इनफैक्ट इफ यू आर टेकिंग E11, वहां भी आपको ऑलमोस्ट 40 मिनट का ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैफिक ट्रेलिंग अ बिट स्लो दैन द यूजुअल ऑन द हेस स्ट्रीट, स्पेशली इफ यू हेडिंग टूवर्ड्स स्पोर्ट्स सिटी। देयर इज पैची ट्रैफिक मरीना डीजे वीआर एज वेल, प्लस अगर आप अला साइड ले रहे हैं इस वक्त पूरे रूट पे देर इज पैची ट्रैफिक, अब 12 से 18 मिनट का डिले। देर इज ट्रैफिक राइट नाउ इफ यू आर ऑन द फर्स्ट अलखेल टूवर्ड्स अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया, 35 मिनट डिले उस रूट पे। एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर।
2: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: Big 106.2. Big.

0: की तरह दिन में एटलीस्ट चार बारी आप भी सोचते हो यार कहीं से आए बट आ जाए अनएक्सपेक्टेड पैसा। बस ये पैसा आपके पास आने वाला है। गेट रेडी, द बिग कैश कॉल इज कमिंग योर वे फ्रॉम द 19th ऑफ अक्टूबर राइट हियर ऑन बिग 106.2। योर चांस टू विन कैश वर्थ 30,000 दिरहम्स, व्हिच आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, पावर्ड बाय बिग टिकट। तो यस, स्टे राइट हियर टू विन बिग कैश। एंड मैं देखना चाहती हूँ कि जब ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि हलवाई अपनी मिठाई खुद तो नहीं खा पाएगा, तो जब आपको ये मौका मिलेगा क्या दिल की सुन के रिस्क लोगे या दिमाग की सुन के रुक जाओगे। स्टे राइट हियर, वेरी वेरी सून फ्रॉम दिस मंडे द बिग कैश कॉल इज बैक। योर चांस टू विन योर शेयर ऑफ 30,000 दिरहम्स ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसकी पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
2: नहीं, ये तो मुफ्त है।
1: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
3: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। हैव यू गॉट व्हाट इट टेक्स टू से स्टॉप?
4: Are you kidding?
3: The Big Cash Call. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2. The Big Jill.
5: All my favorite music in one spot.
3: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
6: Now lease a brand new SUV from Jetor and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
7: Subah uthte hi apne aalishaan ghar se sea facing view, phir infinity pool ya gym aur seedha spa and recovery. Ek game paddle ya tennis. Shaam mein clubhouse aur raat family ke saath. Aur residents ke liye private yachts jahan safar hi मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
3: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 6:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: आज से एग्जैक्टली 30 दिन बाद ऑन द 13th ऑफ नवंबर यू एंड आई हैव अ चांस टू विटनेस मैजिक ऑन स्टेज. वी हैव गॉट द क्वीन ऑफ सूफी म्यूजिक आबिदा जी.

0: शादी हो या कोई भी त्योहार, बावरी और कोरा से दिखो शानदार हर बार। From graceful kurtas and majestic sherwanis to intricately crafted saris, lehengas and salwar suits, redefine ethnic style whether it's for him or her. Get festive, get fabulous at Bavri and Kora at Meena Bazaar, your favorite wedding shopping destination.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
0: The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: Again? The car's not starting.
4: I think the battery's gone.
2: Then stop guessing. Get Solite batteries.
4: What's special?
2: Premium Korean tech. Zero maintenance. Perfect for this heat.
4: Wow, that's smooth. Where do I find it?
2: Auto Pro Fast Track Dialer Battery Auto Studio, any major auto store. Solite batteries. Power you can trust. Distributed by AMAP Group.
0: Missed your morning buzz?
5: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
0: ये सुनो।
6: शेठ भाई, गुड मॉर्निंग। एकदम मस्त है, आप कैसे हैं?
7: तबीयत आवाज से तो आप बिल्कुल ही सही लग रहे हो, लेकिन जवाब जो आपने मुझे पहले दिया था उससे कुछ क्रॉस कनेक्शन हो गया एंड भाभी जी को आपको करेक्ट करना पड़ा। ये अक्सर होता है, कितनी बार भाभी जी आपको करेक्ट करती हैं लाइफ के अंदर?
6: अभी तो बेटर हाफ है मेरी, वो मुझसे बेटर है।
7: कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंसी हो रही है भाई, बता रहा हूँ थोड़ा बच के।
6: हाँ बिल्कुल, आज से थोड़ा सा मैं भी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग पे ध्यान रखूंगा।
7: थोड़ा ध्यान रखो भाई, थोड़ा ध्यान रखो नजरें। हाँ, बट यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल ड्राइविंग। लेकिन चक्कर ये कि मैंने
6: मतलब तो उन्हीं का होता है, पिक्चर तो उन्हीं को देखनी होती है।
7: मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप आंखें बंद करके पिक्चर हॉल में बैठने वाले हो?
6: हमें तो बस उन्हें जाकर के कहते ना, वो एक स्नैक्स का अरेंजमेंट करना है, गाड़ी में बैठा के इनको लेके जाना है, देखो वापस लेके आना है।
7: देखो ये हाय बेचारा का जो नाटक है ना, ये मैं कई सालों से करते आ रहा हूँ इस दुनिया का। मतलब आई बिन देयर डन दैट ब्रो, तो मेरे को पट्टी मत बनाओ, ठीक है ना। मजा तो राजेश भाई को आने वाला है सिनेमा हॉल के अंदर, लेकिन हाय बेचारा, ओ माय गॉड, हमारा तो काम धर्म पत्नी को मिसेज को कुछ करना है भाई। हमारा काम सिर्फ आपको ले जाना पहुंचाना है और घर वापस लेके आना है सही सलामत है, फिर पॉपकॉर्न समोसा ये सब आपकी खिदमत में हाजिर है हम लोग हैं।
6: अभी सुन नहीं रही है तो अपने बयान निकाल रहा हूँ।
7: नहीं वो पता नहीं है, सुन रही है, आवाज उन तक पहुंच रही है, आप टेंशन मत लो, आज इसका जवाब आपको मिलेगा मिलेगा। शाम को बताना मुझे कल सुबह कि आज शाम आपकी कैसी गुजरी है ना।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM to 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: 34 degrees, very very cloudy, फिलहाल लो जाएगा अराउंड 29, ह्यूमिडिटी 51% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill and Mansi. We're playing the 5-second rule. And joining us is, my name is Ali. Ali. मुझे स्पीकर से हटा दो ना।
2: कैसी हो आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। अगर आप स्पीकर से हटा दोगे तो और भी अच्छी हो
2: जाऊंगी।
1: Much better. How are you, Ali?
2: Fine, good.
1: How was your day? I'm good.
2: Perfect. Long. Wake up early. Now heading towards home.
1: Very nice. How is the traffic? आज मौसम बड़ा अच्छा है वैसे।
2: Yeah, cloudy. Very good. Perfect.
1: आपको ऐसा cloudy मौसम में romantic feel होता है?
2: आप वो अच्छे गाने सुन के, आपका शो सुन के, आपके अच्छे गाने सुन के
1: मतलब इसे कहते हैं कि तीर निशाने पे मारना। मैंने पूछा रोमांटिक लगते हैं, कहते हैं आपका शो सुन के अच्छा लगता है। सिंगल हो आप?
2: नहीं नहीं, आई एम मैरिड।
1: ये देखो, ये मेरी किस्मत में हमेशा रोमांटिक बंदे मैरिड ही क्यों आते हैं। फिलहाल अली, करते क्या है आप?
2: मैरिड होते ही रोमांटिक है।
1: अपनी बीवी को छोड़ के सबके साथ होते हैं वैसे तो, ये बात है ना। सो व्हाइल यू आर हेडिंग बैक होम नाउ, हम आपके साथ खेलेंगे 5-second रूल। इट्स अ फन गेम। यू गेट 5 seconds। आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज। तीन चीजें आपने बतानी है 5 second के अंदर। तैयार हो?
2: ओके, रेडी।
0: 5 second रूल।
3: ओह यस।
1: अब मौसम इतना अच्छा है, 3 गाने जिनमें बारिश रेन का जिक्र होता है।
2: बरसात के मौसम में
1: बस हो गया, टाइम खत्म हो गया। फटाफट खेलना है अली, 5 second के अंदर, ज्यादा
2: सोचना
1: नहीं है।
2: चावल, मछली, मुर्गी।
1: ओके, नॉट बैड, ऑलमोस्ट देयर। 3 ऐसे झूठ जो आप बोलते हैं अपनी बेगम से।
2: मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ, सी यू लेटर।
1: ये देखो, ये प्रैक्टिस वाला बंदा अली। ये एटलीस्ट दिन में, इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 10 बारी झूठ बोलते होंगे अपनी वाइफ को, है ना? अब इसके बाद अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं करती हो, देखो आंसर अली ने दे दिया है। फिलहाल 3 गाने बॉलीवुड के जिनमें हम आता है।
2: हम तुम पे मरते हैं
1: और
2: हमारा दिल आपके पास है।
1: टाइम खत्म हो गया है सर, 5 second। 3 ऐसी चीजें जो आपको अपने जॉब के बारे में पसंद नहीं है।
2: टाइम और जो है ना ड्राइविंग।
1: ये देखो, ये झूठ वाले के अलावा ना इनको कोई जवाब आता नहीं, क्योंकि उसकी प्रेपरेशन ये सुबह उठ के रोज करते हैं कि आज मैंने ये झूठ बोलने हैं। क्विकली टेल मी 3 अक्षय कुमार की मूवीज।
2: अक्षय कुमार
1: खिलाड़ी है ना, वो भी आपकी तरह
2: खिलाड़ी।
1: खत्म हो गया अली, फटाफट खेलना है, फटाफट खेलना है। आप बहुत धीरे धीरे खेल रहे हो। 3 things that you pick from a hotel room।
2: सोफा, बेड, टॉवल।
1: 1 second, हेलो। होटल रूम से आप बेड और सोफा उठा के लेकर जाते हो?
2: आई सेड मेबी 3 things, बट यू सी इन द होटल रूम।
1: आई सेड यू पिक फ्रॉम अ होटल रूम। सी अगेन, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। हो गया, टाइम खत्म।
0: 5 second रूल।
3: ओह यस
1: अली, आपने सिर्फ एक ही जवाब, जिसकी आप प्रैक्टिस करते हो ना, मुझे 5 second के अंदर दिया। बाकी तो आपने बहुत खराब खेला ये गेम। मजा आया कि नहीं आया?
2: बहुत मजा आया।
1: चलो जी, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द ड्राइव एंड द मौसम।
2: बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप बस दुआ करें कि जो बातें आपकी मेरी हैं या आपकी बीवी है उनकी कोई सहेली ना सुन ले, फिर आपको घर जाके अच्छा नहीं लगेगा। अली भाई मानसी के साथ ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। चलो, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय। अगर आपने खेलना है तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल।
0: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: यू नो जिंदगी में मैं मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस हैंडल कर सकती हूँ, बट मैं धर्म संकट में पहुंच जाती हूँ जब कोई मुझे बोलता है पहचाना, एंड मैं पहचानती नहीं हूँ सामने से. इट्स नॉट ऑन पर्पस समटाइम्स, इन फैक्ट विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ऑनेस्टली डोंट रिमेंबर. एंड मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं कैसे बोलूँ कि नहीं भाई साहब मैं आपको नहीं पहचान पाई.
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: फिलहाल फेस्टिव सीजन आ चुका है, नवरात्रि है, करवा चौथ, दशहरा, दिवाली, शादियों का सीजन, शॉपिंग तो बनती है, एंड इट्स टाइम टू अपग्रेड योर एथनिक वार्डरोब फ्रॉम लहंगास टू ब्यूटिफुल स्टनिंग साड़ीज, सलवार कुर्ता, शेरवानी, सब आपको मिलेगा बावरी एंड कोरा पे. दे गॉट अ स्टनिंग कलेक्शन एंड राइट नाउ आपको मिलेगा मौका टू विन अ 500 दिरहम का वाउचर कर्सी ऑफ बावरी एंड कोरा. वेरी वेरी सिंपल, अगर आप ये जीतना चाहते हैं देन मुझे एक मैसेज करना है बावरी एंड कोरा, अपना पूरा नाम लिख कर 0543091062 पर. विल प्ले अ फन गेम हियर, इफ यू मैनेज टू गिव मी द राइट आंसर दैट्स इट, यू वॉकिंग अवे विद अ 500 दिरहम का वाउचर courtesy of Bavri and Kora so that you can upgrade your ethnic wardrobe this festive season.
1: Participate in Bavri and Beju Bavra. Guess the look contest and get a chance to win 500 dirhams Kora and Bavri voucher only on Big 106.2.

0: creditmarket.ae. Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
1: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae. Nothing feels wrong, and that's exactly why you should get checked. This October, give yourself a little peace of mind. Pink It Now is back for its 15th year at Zulekha Hospital. Women over 40 can register for a specialist consultation and mammogram for just 299 dirhams. Because looking after yourself isn't selfish. Call 600-52-442 or WhatsApp us. Pink It Now. Don't wait to feel something. Zulekha Hospital. Your health matters. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक. गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:06.
2: Bollywood.

0: बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: सुबह उठते ही अपने आलीशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम, और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
1: Start your morning like a superstar. The Big Breakfast now is Shahrukh's Residences by Danube. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Papa John's.
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: 33 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 29, फिलहाल ह्यूमिडिटी 53% पर।
1: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2।

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे है सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दिल को धड़क धड़कमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपक पहाड़, भरभराहट, थरथराहट, टपक पहाड़, भरभराहट, टपक पहाड़, झटपटाहट, झटपटाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबुगाहट, झुबु

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: I think I should be your favorite person right now because men, I'm going to save your money when it comes to Diwali ki ethnic wear shopping, and women, I'm giving you a shopping voucher worth 500 dirhams courtesy of Bavri and Kora, the perfect place to find the best ethnic wardrobe. Agar aap lehenga dhoond rahe hain, sari, Indo-Western, sherwani, kurta pajama, you'll find everything. Karwa Chauth se lekar Bhai Dooj tak. Wedding season ka collection bhi kamal hai. So head to Bavri and Kora. They are located Meena Bazaar mein. Filhal yahan pe bhi every single evening 500 dirham ka voucher jeetne ka mauka aapke paas hai. Sirf ek WhatsApp karna hai Bavri and Kora apna naam 0543091062 par. Arundhati jaise hai na, Arundhati Ashram, mere phone se better call aaya nahi hoga.
2: बिल्कुल नहीं.
1: Are you also like me कि बहुत सारे होने के बावजूद भी दिल करता है कि नहीं यार, हर ओकेजन पे एक नया आउटफिट होना ही चाहिए.
2: Obviously, मतलब ये रहता है कि हर साल दिवाली पे और फिर दुर्गा पूजा पे तो होली पे न्यू आउटफिट होना ही चाहिए, रिपीट होना अच्छा नहीं लगता.
1: बहुत सही बात है. मतलब लड़कियों से आप दो चीज मत पूछा करो, बहुत ऑफेंस होता है. एक उनकी उम्र और दूसरा कि इतने कपड़ों की जरूरत क्यों है. इट्स वेरी ऑफेंसिव.
2: एवरी टाइम वी डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर ऑन एवरी ओकेजन.
1: ये वी नीड समथिंग न्यू फॉर एवरी ओकेजन, चाहे वो करवा चौथ हो, दिवाली हो, पड़ोसी के घर में शादी हो, तो भी. एंड बावरी एंड कोरा विल सॉर्ट यू आउट. फिलहाल डांडिया वांडिया खेलने जा रहे हो?
2: नॉट मच, क्योंकि आई हैव टू किड्स सो दे आर वेरी स्मॉल, सो डांडिया.
1: घर पे आपको डांडिया खिला रहे
2: हैं? या एग्जैक्टली, मेरा रोज डांडिया होता है उनके साथ.
1: फिलहाल फेस्टिव सीजन है तो ये वाउचर बहुत काम आने वाला है अरुंधति आपके. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू हिंट्स, यू हैव टू गेस द आउटफिट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ यू मैनेज टू गिव मी द राइट आंसर, दिस वाउचर विल बी ऑल योर्स. ऑल द बेस्ट.
2: Thank you.
0: Participate in Bavri and Beju Bavra. Guess the look contest and get a chance to win 500 dirhams Kora and Bavri voucher. Only on Big 106.2.
1: Alright, मैं निकास से लेकर family celebrations तक comfort और elegance दोनों के लिए perfect हूँ. मेरे साथ एक tunic style top.
2: Sharara?
1: No. Tunic style top and a little loose fitting bottom होता है. मेरी लुक को और भी ग्रेसफुल बनाता है एक दुपट्टा.
2: लहंगा?
1: नहीं.
2: ओके सॉरी.
1: करवा चौथ हो या फेस्टिव गैदरिंग्स में ट्रेडिशनल लुक के लिए मैं सबकी फेवरेट हूँ बिकॉज ऑफ द कंफर्ट.
2: ओके, लूज बॉटम,
1: खुली खुली होती है, पोंचे होते हैं, मतलब बड़े कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो इसमें.
2: सलवार सूट?
1: बिल्कुल सही जवाब. इतने सारे गलत जवाब देने के बाद फाइनली पहुंच गई, वरना भी और बोल देती. साड़ी, गरारा.
2: साड़ी तो.
1: सो कंग्रेचुलेशंस, 500 दिरहम का वाउचर आपका हुआ अरुंधति. एंड हैप्पी हैप्पी शॉपिंग. गो गेट योरसेल्फ समथिंग रियली नाइस फॉर द फेस्टिव सीजन फ्रॉम बावरी एंड कोरा. क्या लेने का प्लान है?
2: सूट.
1: जो गैस ही नहीं कर पाई मैं, है ना?
2: एग्जैक्टली.
1: तो बच्चों के साथ साड़ी वाड़ी यू कांट वेयर?
2: नो नो नो, नॉट पॉसिबल. वो आफ्टर द टाइम वो मेरे ही वो पुल करते रहेंगे एंड इट विल बी रुइंड. सो बेटर टू सेफेस्ट ऑप्शन.
1: नो बट यू माइट गेट प्री ड्रेप्ड साड़ीज देयर एंड दे आर स्टनिंग. सो या यू कैन गो फॉर दैट. आपको अच्छा लगेगा, कलेक्शन जाके देख के आना. बट कांग्रेचुलेशंस.
2: थैंक यू सो मच. थैंक यू.
1: बाय अरुंधति.
2: बाय बाय.
0: Beat 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: 101.2. The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: Subah utte apne aalishan ghar se sea facing gate, phir infinity pool ya gym aur seedha spa and recovery. Ek game paddle ya tennis. शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख बाय डैन्यूब फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
4: Your golden opportunity with Big Ticket.
5: This month, we have a 25 million dirham guaranteed grand prize.
4: Five prizes, 200 grams of 24 karat gold bars.
5: Plus, even more gold in our weekly e-draws.
4: Three big spin participants could each win up to 1 million dirhams in cash.
5: Make your golden move. Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
7: Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com.
0: The Big Mix miss kiya gaya.
8: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो.
9: हाय मोनिका.
10: हाय.
9: आपकी रील्स देख देख कर हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपकी रील्स देख कर मैं मूवी देखने जाती हूँ एंड आई फील ऑलमोस्ट सेम सेम. अच्छा बताओ भाई, हमें कुछ रिकमेंडेशंस फॉर बॉलीवुड फिल्म्स जो हॉरर जॉनर की हैं, जिसको देखकर एकदम दिल दहक जाए.
10: देखो, मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है कि मुझे भूत प्रेतों की बातें करने में मजा बहुत आता है. तो जहाँ भूत दिखते हैं वहां मैं पहुंच जाती हूँ. तो बॉलीवुड की जो हॉरर फिल्म है ना, वो देखने का अलग ही मजा है, क्योंकि उसमें गाने भी आ रहे हैं, चटपटा रोमांस भी चल रहा है, तो मजेदार तो होती है. तो बॉलीवुड में जो मेरी फेवरेट हॉरर फिल्म्स हैं, दैट इज 1920. ओ माय गॉड, द क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स में जो हनुमान चालीसा है भाई साहब, गूज़बम्प्स. देन 13 भी, इट्स द ओनली हॉरर फिल्म फ्रॉम इंडिया जिसने एक्चुअली में मुझे डराया था. इट्स अ साइकोलॉजिकल हॉरर और इसमें भूत नहीं है. एंड में बताते हैं क्या हो रहा था, बट अ वेरी गुड फिल्म. एंड देन भूत उर्मिला की, if you have watched, तो ये मेरे को बहुत उसमें भूत से ज़्यादा उर्मिला देख के डर.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
11: Hey, जल्दी हटा, तेरा खड़ा रहा, चल हटा. हाँ, हाँ, हाँ, हाँ.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
12: Still slow moving if you're in Sheikh Zayed. Around a 48 minute delay right now. There's heavy traffic if you are around DIFC. Traffic chilling a bit slow than the usual if you are going towards Mohesna. Murdiv se Mohesna agar aap Sheikh Mohammed bin Zayed pe hain. Still patchy, not really bad. 30 to 37 minute delay. Traffic also slow moving agar Salik bachane ke liye aapne first L khel liye to phas gaye ho. Solid traffic hai niya Alkuz 1 se lekar Alkuz 4. Iske alawa there is patchy traffic right now agar aap Alwa street ki taraf hai, that is if you are heading towards Dubai South. Anything else you'd like to report, mujhe bataiye 800-1062 par.
13: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
14: Big.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम?
2: नाम। Money follows, my brother.

0: बड़ा पगला दूंगा पूरे देश को।
1: देखो मनी, तो अब जाने वाला टाइम आ चुका है, फेस्टिव सीजन है एंड मैं हमेशा मानती हूँ कि फेस्टिविटीज में कैलोरीज एंड खर्चा इट डजंट काउंट। देयर इज वन थिंग अबाउट दिवाली आई लव, इट्स अ लॉट ऑफ शॉपिंग, लॉट्स ऑफ फूड, लॉट्स ऑफ मस्ती एंड द बिग दिवाली मेला।
2: Participate in the Big Diwali Mela contest for a chance to be part of the kids' fashion show and win exciting prizes. The Big Diwali Mela, presenting sponsor Papa John's, powered by Solite Battery. Venue partner Oasis Mall Dubai. Only on Big 106.2.
1: Yes, we are back with a Big Diwali Mela. It's going to be bigger and a lot more fun. We're celebrating Diwali with you on the 31st of October at the Oasis Mall. In fact, we are back with our Mr. Patakhan, Miss Phuljadi. If your children are between 5 and 15 years old and you want them to be a part of the Big Diwali Mela fashion show, register now. Without registration, participation नहीं होगी। Big Diwali Mela, अपना नाम लिख के WhatsApp करना है 0543091062 पर।

0: InsuranceMarket.ae. You know me from InsuranceMarket.ae. Now let me simplify your money too. Credit cards, loans, mortgages. CreditMarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
1: Get ready to celebrate Diwali like never before. The Big Diwali Mela is back. On Saturday, 31st October, join Team Big at Oasis Center Dubai for a spectacular evening filled with fun, games, a fabulous fashion show, spin the wheel and loads of festive entertainment. Bring your family, bring your friends and come make unforgettable Diwali memories with Big 106.2. The Big Diwali Mela, where the celebrations are always big. Presenting sponsor, Papa John's, powered by Solight Battery. Venue partner, Oasis Mall, Dubai. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: Subah uthte hi अपने आलिशान घर से सी फेसिंग व्यू, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है. शाहरुख्स बाय डैन्यूब, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स. लिव लाइफ किंग स्टाइल.
1: Big 106.2. That's my song.

0: सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग गेट, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम, और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख्स बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
1: हैव यू गॉट व्हाट इट टेक्स टू से स्टॉप?
3: आर यू किडिंग?
1: द बिग कैश कॉल Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Powered by Big Ticket. Coming soon on Big 106.2.
4: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
5: I can't wait.
6: Okay. 3, 2, 1.
5: Yes!
7: Here you go, sir. Enjoy your Papa John's new pan pizza.
5: Whoa, cheese all around.
6: And edge-to-edge toppings.
5: And crispy garlic parmesan crust, too.
6: Let me try.
5: Order your own.
7: Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: 101.2. The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: 33 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 29. प्रिटी ह्यूमिड दो, फिलहाल ह्यूमिडिटी 56% पर. कल भी क्लाउडी रहेगा एंड लो जाएगा अराउंड 30 तक.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: टोटल गरबा नवरात्रि वाली फील्स राइट हियर ऑन पिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: द बिग थ्रिल विद नॉन्सी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: फिलहाल टॉकिंग अबाउट द फील्स द वाइब, इमेजिन एक ही स्टेज जिस पे आप आबिदा जी और कैलाश खेर साहब को साथ सुनेंगे. इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम मौका टू विटनेस दिस एब्सोल्यूट प्योर मैजिक. यस, इफ यू आर रेडी फॉर एन इवनिंग जहां पे ये दो लेजेंडरी आवाजें एक साथ आने वाली हैं, तो फटाफट अपनी टिकट्स बुक कीजिए. पैंथियन आपके लिए लेकर आए हैं बॉर्डरलेस मेलोडीज फीचरिंग द क्वीन ऑफ सूफी म्यूजिक आबिदा परवीन विद द मैजिक ऑफ कैलाश खेर लाइव इन कॉन्सर्ट. दिस इज हैपनिंग ऑन द 13th ऑफ नवंबर एट द दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. टिकट्स आर नाउ अवेलेबल प्लैटिनम लिस्ट पे, सो डोंट वेट, बुक योर्स आज ही बिफोर दे आर सोल्ड आउट. दिस इज ब्रॉट टू यू बाय हॉप इवेंट्स, क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस दैट स्टे विद यू लॉन्ग आफ्टर द म्यूजिक एंड्स. And this is going to be one such experience. Event made large by us, Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2.

0: देखो जवानी वाले इश्क नहीं पता, लेकिन जब जवानी से आप थोड़े आगे बढ़ जाते हो ना, तो जो आप चीजें भूलते हो वो काफी महंगी पड़ती हैं जिंदगी में।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: अब एक स्टोरी वायरल हो रही है, यहाँ यूएई की स्टोरी है, जहाँ पे वन ऑफ The ladies, she bought herself 3000 dirham के hair extensions and गलती से वो garbage shoot में फेंक दिए कचरा समझ के। अब ये इतना relatable क्यों है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था कुछ साल पहले। मैंने कुछ shopping की थी, कुछ makeup वेकअप लेकर आई थी and then मैंने कचरे के साथ उसको फेंक दिया था with a certain bags lying around which I thought is garbage, उसके साथ मैंने वो भी फेंक दिया था। तो जो वो दुख होता है ना, ये हार्ट ब्रेक से भी बढ़ के होता है लड़कियों के लिए, मेकअप हेयर एक्सटेंशन कचरे में चले जाना। फिलहाल यहाँ से मेरे जाने का वक्त, मैं आपसे मिलती हूँ अब कल। अंटिल देन डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स 106.2 बिग एफएम इट इज। वहाँ भी बहुत सारे इनवाइट्स जीतने का मौका आपके पास है। यू कैन से हाई टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग, आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो। हैव अ गुड गुड गुड इवनिंग, लीविंग यू विद

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
3: सुबह उठते ही अपने आलिशान घर से सी फेसिंग बीच, फिर इन्फिनिटी पूल या जिम और सीधा स्पा एंड रिकवरी, एक गेम पैडल या टेनिस, शाम में क्लब हाउस और रात फैमिली के साथ, और रेजिडेंस के लिए प्राइवेट यॉट्स जहां सफर ही मंजिल बन जाता है। शाहरुख बाय डैनियल, फुली फर्निश्ड रेजिडेंसेस स्टार्टिंग एट 1.65 मिलियन दिरहम्स। लिव लाइफ किंग स्टाइल।
4: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
5: Your golden opportunity with Big Ticket.
6: This month, we have a 25 million dirham guaranteed grand prize.
5: Five prizes, 200 grams of 24 karat gold bars.
6: Plus, even more gold in our weekly e-draws.
5: Three big spin participants could each win up to 1 million dirhams in cash.
6: Make your golden move. Buy now at bigticket.ae.
7: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
8: मैं गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
9: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: ask you.
1: क्या शू?
0: एक तरफ तराजू,
1: क्या शू?
0: आ तेरी हंसी मेरे आंसू,
1: क्या शू?
0: आ घुट घुट की क्यों सांस लूं,
1: क्या शू?
0: उसे देगा क्या हिसाब?
2: तेरा पिंजरा मजाल ने खाना, परिंदे आने उड़ जाना, तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना, सारा लाना बाना, परिंदे आने उड़ जाना तेरा।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE कॉल 800-ALFRED-247 लिसन टू हर एवरी डे
1: मोगेम्बो खुश हुआ
2: निखिल आपके हिंट्स हैं मैं एंगेजमेंट से लेकर संगीत संध्या तक सेलिब्रेशंस में खूब नजर आती हूँ मेरे मल्टीपल पीसेस होते हैं देयर इज अ टॉप देयर इज अ बॉटम एंड अ स्टनिंग दुपट्टा मेहंदी हो या फिर सन डाउनर मुझे फेस्टिव लुक के लिए स्टाइल किया जाता है मैं फ्लोई हूँ मैं ग्लैमरस हूँ एंड यूजुअली मैं चोली के साथ पहनी जाती हूँ व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट
3: लहंगा
2: मुझे लगा कि साड़ी या सलवार बोलोगे बट लहंगा बोल ही दिया पहली बार में
3: थैंक यू
2: 500 दिरहम का वाउचर आपका हुआ कर्टेसी ऑफ बावरी एंड कोरा एंड आई एम टेलिंग यू वहां पे आपके लिए भी बहुत स्टनिंग कुर्ताज एंड शेरवानी है सो गो एंड हैव अ लॉट ऑफ फन दे've गॉट अ स्टनिंग कलेक्शन
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Chill. Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: No rush, no noise, just soul-soothing music on a moonlit ride. This is The Big Chill on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा.
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका. फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे. क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया.
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.